0: अहो ऐकलत का?
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। ओम शांति। आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की। एंगर यानी गुस्सा, यानी क्रोध। ऐसा लगता है कि जिंदगी का सच है गुस्सा करना, या गुस्सा अपने आसपास चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने बात ये की थी कि ये गुस्सा, ये क्रोध जिसे हम मान के चलते हैं कि ये बहुत सहज है, ये आ जाता है, ये क्या करता है हमें, क्या होता है हमारे साथ जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात हमने ये

0: समझा था, ये बिलीव था कि दूसरों के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण हमें गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन एक और बिलीव सामने आया था कि गुस्सा जब भी आता है उसकी वजह मैं खुद होता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा होता हूँ या मैं कर रही होती हूँ वो गुस्सा। ये भी जरूरी नहीं कि आप इस बिलीफ को माने, जरूरी है कि हर बार जब क्रोध आए तो समझें, पॉज लें और उसके बाद उसे खुद अनुभव करें। और आगे चल के ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ और बिलीव्स हैं जो गुस्से या क्रोध से जुड़े हुए हैं। आज की इस कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से और ऐसे कुछ मान्यताएं, बिलीव्स हैं जो हमने जिंदगी में शामिल कर ली हैं जो कि गुस्से से जुड़ी हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आई थी वो ये गुस्से से जुड़ी हुई थी कि गुस्सा जो है वो एक मान्यता हम अभी तक जो चल रही थी कि दूसरों के कारण गुस्सा आता है, और आपकी आपने ये कहा था कि अगर हम देखें सही तरह से, अगर उसे जांचें तो गुस्सा हम खुद कर रहे होते हैं, तो ये भी अनुभव के ऊपर चलते हुए करना था। और कुछ और ऐसे बिलीव्स गुस्से से जुड़े हुए हैं, क्या हम थोड़ा और उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या है वो और बिलीव्स?
1: कई बार या ज्यादातर ऐसे होता कि परिस्थिति इस तरह हमें दिखाई देती या जो सामने वाले व्यक्ति ने जो बोल हमारे प्रति यूज किए वो इस तरह होते हैं कि एकदम से हम ऊपर से कहते और कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे पास,
0: कोई चारा नहीं था,
1: गुस्सा तो मतलब करना ही था उस टाइम, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं जैसे उस टाइम। ये भी एक बिलीफ अंदर बना है कि आई हैव नो चॉइस, आई हैड टू गेट एंग्री। और जबकि वास्तविकता ये है कि, और ये क्यों हमारा बिलीफ सिस्टम बना, क्योंकि बचपन से ही या एजुकेशन सिस्टम में या पेरेंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि आई हैव अ चॉइस, कि मैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स अपनी चॉइस से क्रिएट करती हूँ। कहीं ना कहीं बचपन से ही वो चला आया कि वो जैसे अपने आप क्रिएट हो रहा है, तो वो किसी ने सिखाया नहीं, तो आई डिड नो, आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। जबकि वास्तविकता ये है कि एट एवरी स्टेप आई हैव 100% चॉइस।
0: नो, इट मींस एट एवरी स्टेप आई हैव एक्चुअली आई हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट इट एटलीस्ट।
1: सी, इट्स लाइक दिस कि आप उठाकर ये कप अभी फेंक दो नीचे और इसको तोड़ दो, एंड आई विल शाउट एट यू, एंड देन इफ आई से ऊपर से कि आई हैड नो चॉइस, आपने किया ही उस तरह से, या आप कुछ ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज आप अभी अभी यूज करो, एंड आई जस्ट शाउट बैक एट यू एंड आई सेड आई हैड नो चॉइस, आपने बात ही इस तरह से की, यू नो, एंड आई विल एकदम से चेंज माई वे ऑफ टॉकिंग एंड आई विल से आपने बोला ये इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए थी आपसे? माई होल वे ऑफ टॉकिंग विल चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कर लिया कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, आई एम लाइक अ मशीन।
0: No, but do I have a choice? Yeah, this is...
1: You don't think you have a choice?
0: Yeah, but then actually, you know, अगर हम देखें तो एंगर को हम एक टूल की तरह भी यूज करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप,
1: मोर इम्पोर्टेंट इज डू आई हैव अ चॉइस, हम क्या कर रहे हैं वो इट्स डिफरेंट, डू आई हैव अ चॉइस या आई एम ऑटोमेटिक।
0: वी बिकम ऑटोमेटिक बट यस वी कैन हैव अ चॉइस।
1: No, we have a choice. It's not, अगर हम ये भी कहें कि we can have a choice, इसका मतलब ये है कि हो तो सकती है choice, अभी नहीं है, अगर use करेंगे तो है, but वास्तव में तो हर step पर है। आपने जो बुरा भला कहना था आपने कहा, अब उसके बाद मुझे क्या कहना है ये तो आप नहीं control करते। I have a choice. एंड आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम अपने मूड के हिसाब से अपनी चॉइसेस को यूज करते भी हैं। कई बार मूड बहुत अच्छा, तो अगर आपने कुछ बहुत बुरा भी कह दिया, मेरा मूड ही इतना अच्छा है उस टाइम, क्या ऐसे
0: चलो छोड़ो, हाँ
1: तो व्हाट डिड दैट हैपन, आपने तो फिर भी उतना ही बुरा कहा था। और कई बार मूड अच्छा नहीं है तो आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया, आई विल गो एंड आई से आई हैव नो चॉइस। दो टाइम्स आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दो डिफरेंट चॉइस, तो इट्स जस्ट दैट मेरे को कॉन्शियसली उस चॉइस को यूज करना है, और उसके लिए पहली बात ये बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। क्योंकि अगर मैंने यहाँ अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है, एवरी बिलीफ सिस्टम वो पूरा डैमेज कर रहा है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, आई हैव नो चॉइस मतलब मुझे गुस्सा करना अलाउड है, आई हैव अ चॉइस, मैं जो थॉट जो फीलिंग अभी क्रिएट करूँ इट्स माई चॉइस, तो आई आस्क माई सेल्फ which one do you want and which one would it always be, it'll never be anger.
0: Actually usse pe pehle sister shivani ki ye choices pe bhi aate hain, ek aur baar rub in karna bahut zaruri hai that anger इज बैड, यू नो, समवेयर वी डोंट इवन एक्सेप्ट इट. वी हम ये मान के ही चलते जा रहे हैं कि गुस्सा कर भी दिया तो क्या हो गया, काम तो निकला. कम से कम हम ये एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि तभी ये सारी इस पे काम करना हम तभी शुरू करेंगे जब कहीं बेसिकली अंदर डीप विद इन वी वुड लाइक ही एंगर शुड गेट आउट ऑफ माय सिस्टम.
1: इसीलिए कहा था कि सबसे पहली चीज परिवर्तन के लिए फर्स्ट वो होगा अंडरस्टैंडिंग कि एंगर मेरे लिए हानिकारक है. जब तक वो नहीं होगा तो सेकंड स्टेज पर नहीं जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज एंगर इज अनहेल्दी फॉर मी, इट इज एब्सोल्युटली बैड फॉर मी, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स, फॉर मी. सेकंड इज देन कि मैं उसके लिए जिम्मेवार हूँ. एंड थर्ड इज कि कौन सी बिलीफ सिस्टम है जो मुझे चेंज करनी है. बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे जब तक उससे मुक्त होना नहीं चाहेंगे. तो अगर क्रोध अच्छा लगता है देन यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ इट. इट्स ओनली अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनके लिए भी वो हानिकारक है, तो देन व्हाई नॉट. व्हाट गुड, अगेन एंगर इज गुड, तो व्हाट गुड इज इट गिविंग टू मी, वो देखना होगा. आई हैव नो चॉइस, इस ऑप्शन को चेक करें, नहीं तो वो बार बार अंदर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम्ड होगा कि आउट ऑफ चॉइस रिस्पॉन्सेज चलते जाएंगे. एंड अनदर वेरी कॉमन बिलीफ सिस्टम इज कि एंगर तो नॉर्मल है. ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है, गुस्सा किया तो इसमें गलत क्या है. तो नॉर्मल की परिभाषा भी हमने कैसे बनाई, क्योंकि कर करके हमने इतनी बार गुस्सा किया, इतनी बार गुस्सा किया कि अब वो हमारा संस्कार बन गया है. तो कोई भी चीज बार बार करने से वो हमारा संस्कार बन गया एंड वी आर कंफर्टेबल विद इट. और तब जब हम उसको कर भी देते हैं तो हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है. तो जब तक हम ये बिलीफ रखेंगे कि एंगर नॉर्मल है, विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आई विल हैव टू टेल माई सेल्फ कि एंगर एक नॉर्मल इंसान के लिए टोटली अबनॉर्मल है. एंगर इज अबनॉर्मल क्योंकि इट डजंट मेक मी फील गुड. ये चेंज करना पड़ेगा. जैसे मैंने अपने आप को कहा एंगर अबनॉर्मल है मेरे लिए, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेकिन पकड़ के रखा एंगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज तो मुझे करना अलाउड है. हर बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू लेट एंगर कम वेरी नेचुरली टू मी. एंड वही बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, माय बिहेवियर.
0: और हर बार जब भी मैं गुस्सा हुआ या हुई, कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम साथ में था तभी वो गुस्सा हुआ. सो अगेन ओके, चेकिंग एक्चुअली इज दैट कि मैंने कौन से बिलीफ सिस्टम को लेके गुस्सा किया.
1: सेल्फ अवेयरनेस इज दैट. सेल्फ अवेयरनेस ये होगी कि जब आपको गुस्सा आने लगा है, आप चेक करेंगे कि कौन से बिलीफ सिस्टम से मैं इसको अलाउ कर रही हूँ. व्हेन यू आर अवेयर यू चेक विच बिलीफ सिस्टम एंड जैसे आप उस बिलीफ सिस्टम को देख लेते हैं, ड्रॉप इट. यू नो, जैसे सपोज आपने कुछ बुरा कहा मुझे अभी और मैंने जस्ट गुस्सा करना शुरू किया एंड एकदम से आई एम अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं देखूँ कौन सा बिलीफ सिस्टम है उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया. चेक माई बिलीफ सिस्टम. उन्होंने तो दिलाया नहीं, ड्रॉप. And I don't get angry.
0: So, Shivani, एक और belief system जो I can actually clearly see is कि anger is justified. जब एक छोटी सी बात मैं लेती हूँ कि suppose कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है, कहीं point है, time है और appointment है या major मेरा program है या live है और suppose my driver happens to be late और मेरा blood pressure तो ऊपर नीचे हो चुका है पहले ही already. तो उसके आते ही उसके पास कोई ऐसी explanation नहीं है जो वो किया जाए, तो यहाँ ऐसा मुझे लगता है कि मुझे हर बार ये लगा कि ये जस्टिफाइड है. गुस्सा तो चढ़ेगा ही, मतलब इट्स जस्टिफाइड. और तब अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो यू नो वेयर, अब हाउ टू चेंज दैट. एक्चुअली
1: व्हेन यू स्टिल फील कि वो यूजफुल है उस टाइम,
0: नहीं यूजफुल नहीं है. लेकिन
1: एक तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आप है क्योंकि आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट होगी, स्पेशली अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करने आ रहे हैं. और दूसरा, आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं जो आपकी गाड़ी चलाने वाले हैं अभी, तो अगर उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो सिचुएशन कुड गो आउट ऑफ कंट्रोल. व्हाट गुड हैज कम आउट ऑफ इट उनको गुस्सा करने के बाद.
0: लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मैंने वेंट आउट किया अपना.
1: वेंट आउट तो किया क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था. लेकिन क्रिएट भी क्यों किया जब मुझे समझ में आ जाए अगर कि ये हानिकारक है, मैं क्यों क्रिएट करूंगे. ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ क्या करना है, जो कि आवश्यक है, कि जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है, आई जस्ट आस्क हिम व्हाट द रीजन इज कि आप लेट क्यों हैं. और अगर उनके पास एक वैलिड रीजन नहीं है तो हम एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकते हैं कि मुझे प्रोग्राम पे पहुंचने में लेट हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट कि यू शुड नॉट बी लेट, अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सम एक्शन फॉर दैट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट. लेकिन उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे और फिर इतना एनर्जी रिलीज एंड फिर दूसरे का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे, प्रोबेबली वो सब नहीं चाहिए.
0: लेकिन कई बार ये लगता है कि जब गुस्सा किया, मतलब ज्यादातर हम ज्यादातर लोगों में ये आती है बात कि गुस्सा कर दिया तो अगली बार यू नो ही हैज दिस माइंडसेट कि मुझे टाइम पे पहुंच जाना चाहिए अदरवाइज शी विल गेट एंग्री. तो इसके कारण काम हो जाता है, लोगों को ये लगता है कि मोटिवेट भी
1: गुस्सा एक मोटिवेटर है कि ये काम कराता है और इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और ये हमारे हर क्षेत्र पे यूज हो रहा है. पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज करते हैं
0: मोटिवेटर, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मतलब वो
1: इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर लेवल से लेकर के गुस्सा कराने से काम जल्दी हो जाएगा. एंड इवन आज हम देखते हैं लाइक यू नो जो सीनियर लेवल पर हैं कॉर्पोरेट्स में, वो सोचते हैं कि अगर इनको गुस्सा कर दो ना तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे क्योंकि इनको लगेगा हमें करके दिखाना है. बट इट्स नॉट रियली गोइंग टू हैपन दैट वे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बार बार गुस्सा करते हैं और कईयों की पर्सनैलिटी भी ये बन जाती है कि वो डेलिबरेटली गुस्सा करते हैं ताकि उनको ये लगता है कि उनके गुस्सा करने से जो सामने वाला है वो कुछ नया सोचेगा, वो क्रिएटिव सोचेगा, वो यू नो कुछ करके दिखाएगा या जितना देर में करने वाला था उससे जल्दी करके दिखाएगा क्योंकि उसको डर है कि मैंने गुस्सा किया या गुस्सा कर दूंगा. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो सामने वाला है वो स्विच ऑफ हो जाता है जब उसका सीनियर उसे गुस्सा कर देता है. वो जो परफॉर्म कर सकता था ना एक्चुअली उससे कम परफॉर्म करता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो उस सीनियर से तो बिल्कुल दूर हो जाता है, बिल्कुल दूर हो जाता है बिल्कुल. और यहाँ तक कि आपको वो सीनियर बहुत ज्यादा पसंद ही नहीं, आप अवॉइड करना शुरू करते हैं कि इनसे तो बहुत ज्यादा मिलना ही ना पड़े. किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों गुस्से से नहीं मिलने वाली है. तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अगर हमें बिल्ड करनी है एक रिलेशनशिप में तो गुस्सा उस रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है. जब हम गुस्सा करते हैं बार बार, स्पेशली एज अ सीनियर अगर हम अपने जूनियर्स पे या एज अ पेरेंट अपने बच्चों पे बार बार गुस्सा करते हैं, हम प्रूव कर रहे हैं कि मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. आप मेरी क्या रिस्पेक्ट करोगे, मेरी खुद ही रिस्पेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एवरी टाइम. तो एंगर इज नॉट द टूल क्योंकि एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर या एज अ पेरेंट आपको करना क्या है, आपको इन्फ्लुएंस करना है. आप चाहते हैं ना कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए. लेकिन आपका इन्फ्लुएंस उन पर पड़े उसके लिए वो आपके क्षेत्र में तो होने चाहिए इंटरनली. लेकिन अगर वो आपसे इतनी दूर चले जाते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस उन पर कैसे पड़ेगा क्योंकि इंटरनली वो आपसे बिल्कुल स्विच्ड ऑफ है. दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, ओनली आउट ऑफ फियर दे आर डूइंग व्हाट यू वांट. तो फियर और रिस्पेक्ट, लव एंड फियर, ये सब इकट्ठे नहीं रह सकता. तो अगर आपको कोई डरता है आपसे, आपको अगर लगे कि ये अच्छा साइन है, दैट्स अनदर रॉन्ग बिलीफ. कई लोग समझते हैं डर को ही रिस्पेक्ट समझ लेते हैं कि हाँ सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि सब लोग डरते हैं. डर इज नॉट रिस्पेक्ट, नॉट एट ऑल. लव इज रिस्पेक्ट. अगर सच में हमें रिस्पेक्ट करते हो तो वो प्यार होना चाहिए. डर कैसे हो सकता है? डर मतलब आप सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और है. सो वी कैन नेवर यूज एंगर एज अ मोटिवेटर, नेवर. एंड उसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस हमें यही करनी पड़ेगी, कॉन्शियसली अटेंशन देके लोग जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट ट्राई टू ऑलवेज चेंज पीपल.
0: पर लेकिन फिर हमारे काम नहीं हो पाए, फिर
1: हमारे काम फिर भी होंगे क्योंकि वो जो है जैसे है उस पोटेंशियल को एक्सेप्ट करके फिर हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए. बाकी हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्षमता कितनी है. आप किसी को उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा आगे पुश नहीं कर सकते हो गुस्से से, उल्टा गुस्सा करने से आप उसको और ही अपनी क्षमता से नीचे ले आएंगे, और जो एनर्जी एक्सचेंज होगा सारा दिन उसका क्या, और जो मेरा नुकसान होगा
0: सबसे बड़ा, सबसे आई थिंक हमें बहुत सेल्फिश हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं रियली डिप्लीटिंग
1: मी सेल्फिश
0: एंड ऑफ कोर्स एक और बात ये कि इससे ये मेरी आदत बनता जा रहा है।
1: और एक्चुअली अगर हम देखें तो जब हम इस तरह का मेथड यूज करते हैं, हमारा अपना मोटिवेशन, हम मोटिवेटर के लिए यूज कर रहे हैं ना, हमारा अपना मोटिवेशन लेवल तो डाउन हो जाएगा, और जो दूसरे का मोटिवेशन है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होगा, और एनर्जी एक्सचेंज जो बीच में है दैट्स वेरी नेगेटिव। तो इट्स हर स्टेप पे हानिकारक है। जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, जो रैशनल इंटेलिजेंस यूज करेंगे आईक्यू सिर्फ, वो सिर्फ काम की तरफ देखते हैं, टास्क ओरिएंटेड, काम हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक द वर्क शुड गेट डन, उसके लिए आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, जो भी करना है, दैट इज रैशनल इंटेलिजेंस। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, काम हो जाएगा लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से चले, उनका ज्यादा फोकस ये होगा कि रिलेशनशिप्स, लोग आपस में बहुत हेल्दी हो, एंड दे आर श्योर अबाउट दैट कि जब वो हेल्दी होंगे तो काम तो अपने आप हो जाएगा। तो फोकस चेंज हो गया, टास्क ओरिएंटेड की जगह पीपल ओरिएंटेड। इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों की हाई होगी, दे विल बी मोर पीपल ओरिएंटेड, एंड वो आप तब होंगे पहले जब आप सेल्फ ओरिएंटेड होंगे।
0: अगेन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रियलाइज दैट जो भी एंगर की बात जहां तक आती है, पहला मुझे लगता है कि ये शब्द हमेशा याद रखें कि ये हमारे लिए खराब है।
1: Absolutely.
0: It's unhealthy for me, for the society, of course, we understand. And when we look at television, जब हम दुनिया की बात कर रहे होते हैं, हम हर बार बोलते हैं कि it's all because of anger. अच्छा, यहाँ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि जब हमने मोटिवेशन की बात की, पेरेंट्स या उनके बच्चों की बात करें या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट्स की बात करें, जनरली ये कहते हैं कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो प्यार भी तो करता हूँ। तो एक ये कहीं ना कहीं हमें खुद को ये फीलिंग होती है कि गुस्सा करके गलत ही किया हुआ है,
1: राइट? तो इसलिए उसके लिए हम कॉम्पेंसेट भी करते हैं। और बहुत बार ना ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करेंगे नहीं अगर तो सर्वाइव कैसे करेंगे,
0: मेरी प्रोटेक्शन है। आई मेट somebody who said कि एंगर इज माई प्रोटेक्शन,
1: राइट?
0: अदरवाइज पीपल विल यू नो ईट मी अप।
1: एब्सोल्युटली।
0: बट
1: अब इसको भी चेक करें ना, आप देखेंगे जितना सीनियोरिटी में आप ऊपर जाते जाएंगे, आपके नीचे जितने लोग हैं जिनके आप जिम्मेवार हैं वो बढ़ते जाएंगे। एंड अगर आप सबके साथ ये वेपन यूज करेंगे कि गुस्से से काम होता है, जस्ट सी द डैमेज दैट यू डू टू योरसेल्फ। क्योंकि एक जने को आपने गुस्सा किया, वो जितनी एनर्जी सारी आपने उस तक फेंकी, बाद में वापस किसके पास आएगी?
0: डेफिनेटली
1: मेरे पास आएगी। अब उसके पास देने के लिए वो पहले मुझे किसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। That is the biggest, you know, irony. But we can't help it. मुझे आपको गुस्सा करना है, I have to give anger to you. लेकिन आपको देने के लिए पहले मुझे अपने आप को देना पड़ता है। तो पहले यहाँ क्रिएट होता है वो सारा, तो सारा वो नेगेटिविटी पहले यहाँ क्रिएट होती है, यहाँ से निकलती है, आपकी तरफ जाती है। तो जो गुस्सा कर रहा है उसका जो डैमेज है वो अंदर से बाहर है, उसने अंदर वो एनर्जी क्रिएट की फिर बाहर की तरफ फेंकी। जो गुस्से को रिसीव कर रहा है उसका जो डैमेज है वो बाहर से अंदर है, वो बाहर से रिसीव करेगा और फिर उसको जितना अंदर लेकर जाना पड़ेगा वो लेके जाएगा। तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ?
0: जिसके अंदर से जा रही है वो।
1: सी एट एवरी स्टेप, जो आपको जो दिया आप तक तो पहुंचते पहुंचते वो डायल्यूट होगा और फिर आपके पास अपनी लेयर है कि आपको कितना लेना है। लेकिन आपको देने के लिए सारा तो मैंने अपने अंदर से क्रिएट किया, अब आप सिर्फ एक है। अब मुझे सारा दिन में कम से कम 10-15 लोगों को इस तरह से गुस्सा करना पड़ता, क्योंकि ड्राइवर नहीं आया, फिर मेड ने ठीक से काम नहीं किया, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर इधर जूनियर, फिर उधर कोई और। सो ऑन एन एवरेज हमारे पास कम से कम 10-15 लोग होंगे सारा दिन के अंदर जिन्हें हम जस्टिफाई करते हैं कि हमें गुस्सा करना पड़ता है। करते जाइए, उन सबको एक एक बार मिलेगा, और हमें 10 लोगों को करने के प्रोसेस में 10 बार हमारे अंदर से गुजरेगा, फिर वो 10 लोगों तक पहुंचेगा, और फिर वो रिटर्न में हमारे बारे में कैसे सोचेंगे?
0: कंटिन्यूस रिलेशनशिप की
1: नहीं, नेगेटिव ना। अभी आपको गुस्सा कर दूं तो आप कैसे सोचोगे? वही सब सोचोगे, वो सारी एनर्जी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो 10 times 10 बार क्रिएट किया बाहर जाते थे, 10 बार अंदर। तो सारा दिन में मुझे कितनी बार मिला? आप सबको एक एक बार मिला मुझे ना। अगर फिर भी अपना इतना नुकसान करना चाहते हैं,
0: अगेन यू नो सिस्टर शिवानी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो इतना जल्दी, मैंने पहले भी बात की थी कि रिएक्शन इतनी जल्दी होता है या गुस्सा इतनी जल्दी आता है और हम सोचने से पहले पहले तक ही एक्शन ले चुके होते हैं।
1: मतलब ये चीज उस टाइम नहीं सोचनी है डेफिनेटली, क्योंकि अगर उस टाइम सोचेंगे तो ये अब रुकने वाला नहीं है। ये जब अभी आप जब बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, ये तब सोचने की बात है कि ये सारे जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमने कहा गुस्सा कोई हमें और दिलाता है, गुस्सा नॉर्मल है, गुस्सा नेचुरल है, ये भी एक बहुत कॉमन, ये तो नेचुरल है। इनफैक्ट अगर कोई कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, एवरीवन विल लुक एंड मोस्टली पीपल विल से ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतना अननेचुरल समझा जाता है। तो गुस्सा नेचुरल है ये भी क्यों हम समझते हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो हमने उसी को लेबल दे दिया, क्योंकि अगर वो अननेचुरल है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी नेचुरल स्थिति पर आने के लिए, तो हमने उसी को नेचुरल लेबल दे दिया। जैसे अगर किसी को बुखार, यू नो कईयों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो 99 नॉर्मल रहता है। अब सी अगेन 99 नॉर्मल रहता है, क्यों 99 इज नॉट नॉर्मल, लेकिन क्योंकि वो हमेशा ही 99 उनका रहता है एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन, तो उन्होंने अपने लिए ये पैरामीटर सेट कर दिया कि मेरे लिए ये नॉर्मल है। सेम थिंग हैपेंड विद दिस, किसी को अगर कोई बीमारी और लग जाए जो कि जिसका इलाज नहीं हो सकता, दे एक्सेप्ट दैट कि मेरे लिए ये अब ये नॉर्मल है। अगर मेरे घुटनों में दर्द रहता है एंड मैं कुछ मेहनत नहीं करना चाहती उसको ठीक करने के लिए, दी अदर ऑप्शन इज एक्सेप्ट कर लो कि मेरे लिए अब ये दर्द नॉर्मल है एंड आई लर्न टू लिव विद द पेन। मुझे पता जब तक चलना है, जब तक जीना है उस दर्द के साथ चलना। सेम थिंग विद दिस पेन, इसको भी मैंने नॉर्मल कर दिया, तो आई लर्न टू लिव विद दैट पेन एंड आई एक्सेप्ट इट एज नॉर्मल। एंड जैसे ही मैंने उसको कह दिया वो नेचुरल है, दैट्स डेंजर साइन फॉर मी, बिकॉज व्हेन आई से एंगर इज नेचुरल दैट मींस ओके आई डोंट नीड टू मेक एनी एफर्ट एट ऑल।
0: हो सकता है कि बहुत से दर्शक ये कहें भी कि हाँ जब मैंने मान लिया इसे कि नेचुरल है तो मैं बस और बहुत सी चीजें काम करने की, इस पे काम क्यों करें,
1: क्यों करें, क्योंकि और मेन जस्टिफिकेशन उसका ये भी हो जाता है सब लोग करते हैं, सब लोग ही तो कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यू नो कि सब कुछ करते हुए घर परिवार सब संभालते हुए गुस्सा ही ना आए। यू नो दैट्स हाउ नेचुरल इट्स सो इनग्रेन्ड दैट बिलीफ सिस्टम कि ये तो नेचुरल है। आजकल जैसे बहुत हम पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में अगर, तो लोग हमें बताते हैं कि जितना हम भोजन खाते हैं, पका हुआ जितना भोजन खाते हैं, तला हुआ फ्राइड, ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, हमें पता है, फिर भी हम वो भोजन खाते हैं और फिर वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है और हम कहते हैं ये तो नेचुरल है। अब टॉक्सिन्स तो नेचुरल नहीं हो सकता, नेचुरल तो हेल्दी बॉडी है, हमने अपनी बीमारियों के साथ अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नेचुरल है। तो आजकल ज्यादातर किस चीज का प्रचार हो रहा है कि डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, यू नो बीच बीच में कुछ ऐसा करें जिससे वो सारे टॉक्सिन्स जो अक्यूमुलेट हुए हैं वो निकल जाने चाहिए। तो डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, उसके लिए आप कच्चा खाओ, फ्रूट खाओ, ओके जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि वो एफर्ट नहीं करना पड़ चाहते अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। सेम थिंग विद द माइंड, दीज आर टॉक्सिन्स, ये अक्यूमुलेट हो गए हैं, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर अटेंशन रखने शुरू कीजिए, इट विल गेट डिटॉक्सिफाइड, पूरी तरह से वो पॉइजन सारा बाहर निकल जाएगा। मेहनत नहीं करना चाहते ये तो नॉर्मल है, तो उस टॉक्सिन को, उस जहर को जो अंदर भरा हुआ है, उसी को नेचुरल मान के चलना अपने लिए कितना हानिकारक हो जाता है। इट इज सच सो डैमेजिंग, हम कितना नुकसान अपना करते हैं
0: और नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये कहाँ तक जा रहा है। जैसे आपने कहा कि जो चीजें जो फिजिकल लेवल पे हमें टॉक्सिक है, उनके लिए तो हम फिर भी एक बार को सोचते हैं और जानने की कोशिश जरूर करते हैं, इसको हम समझ ही नहीं पाते। जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम हमारा ये है, ये सारी मान्यताएं हैं कि ये सहज है, ये नेचुरल है, ये जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट में है और वो अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा, देयर वाज दिस लेडी टाइपिस्ट ही हैड, एंड उनको इतना शाउट और कर किया, वो बाहर चले गए एंड देन ही एक्चुअली चेंज हिमसेल्फ एंड ही सेड मैं एक्टिंग कर रहा था क्योंकि डांटना जरूरी था। मैंने बोला तो ये आपकी बॉडी को कितना कर रहा होगा, तो ही सेड कि नहीं मेरे को, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बट अगेन वो उतनी देर के लिए आई थिंक
1: एब्सोल्युटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको क्रिएट करो और वो अंदर वो टॉक्सिन्स नहीं क्रिएट हो। एंड आप क्यों, जरूरी क्यों, ये कौन सा बिलीफ सिस्टम था? आपका तो नुकसान हुआ ही हुआ, और सामने वाले का. एंड एक सेकंड के लिए इवन सोचना चाहिए कि जब हम किसी को इतनी दूर से डांट देते हैं और जब वो व्यक्ति जाता है अपने जगह पे जाता है बैठ कर काम करता है, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी, कितनी देर तो लग जाती है अपने आप को स्टेबलाइज करने में. एंड वी एक्चुअली शाउटेड एट द पर्सन ताकि उसकी परफॉर्मेंस
0: अच्छी हो जाए.
1: ये कौन सा बिलीफ सिस्टम?
0: अच्छा, एक और बिलीफ सिस्टम जो मुझे लगता है कि इट गिव्स मी पावर.
1: या
0: इट गिव्स मी एनर्जी, एड्रेनलिन फ्लोज व्हेन आई गेट एंग्री.
1: क्योंकि जब वो गुस्सा आता है एकदम से तो इट्स लाइक अ सर्ज ऑफ पावर, यू नो, एकदम से उत्तेजना जिसको कहते हैं, तो अलर्टनेस, ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. लेकिन एक्चुअली उसके बाद कैसा फील होता है? बिल्कुल ड्रेन आउट मेंटली इमोशनली, हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. लेकिन उस थोड़े क्षणों के लिए वो एड्रेनलिन रश जो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी को उसकी एडिक्शन हो जाती है. अब वो एड्रेनालिन स्मॉल अमाउंट्स में इज ओके, लेकिन जब वो बार बार उतना सिक्रेट होता जाता है, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक फॉर द बॉडी ऑल्सो. तो इसीलिए ये सारे जो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं, इनको कहीं ना कहीं हमें हर समय चेक करना पड़ेगा. आप देखो आजकल पेपर में जब हम पढ़ते हैं, किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने अपनी रिस्ट स्लिट कर ली, फिजिकल हार्म, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये कैसे अपना इतना नुकसान कर सकते थे, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है. अब ये केसेस कितने होंगे, रोज के 100,000 पूरे वर्ल्ड. लेकिन मेंटल हार्म
0: जो हम खुद को दे
1: रहे हैं, इमोशनल हार्म, फिजिकल हार्म बहुत कम लोग करते हैं. और वो भी जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अपने आप को पता नहीं कैसे कर सकते हैं. और मेंटल एंड इमोशनल हार्म वो हम में से कौन कौन कर रहा है? एवरीवन एवरी डे and probably very very often during the whole day. तो वो हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं, हम अपना ही नुकसान खुद ही कैसे कर सकते हैं, और फिर बोलते हैं उन्होंने नुकसान किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने अपने साथ कैसा किया. That's a very big question.
0: Definitely, you know, somewhere actually, और मैं बहुत justified करता रहता हूँ, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं. Actually इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा अपना हो रहा है, और ना सिर्फ इमोशनली या मेंटली, फिजिकली भी बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा
1: है. एंड रिलेशनशिप्स ऐसे में बार बार करने से ज्यादा थोड़े समय के बाद हम बहुत अकेले हो जाते हैं, बिकॉज आई टेंड टू गेट डिसकनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी, क्योंकि फॉर बहुत ज्यादा लोग मेरे आसपास रहना पसंद नहीं करते. रिलेशनशिप
0: आई एम नॉट लाइक्ड, एक्चुअली पर्सनालिटी ये बन जाती है. बहुत मतलब बहुत क्लियरली ये बात समझ में आती है ससुर शिवानी, और ये पता भी नहीं चलता मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा कब बन गई, मुझे समझ में ही नहीं आ पाया. वक्त नहीं है अब, लेकिन एक बात मैं छूना चाहूंगी कि कारण क्या है, ये जो गुस्सा है इसका, इसकी वजह क्या है जो इसे हम इतना सहज मान के चलते आ रहे हैं.
1: गुस्से का मेन कारण है कि जब अंदर, जो हमने कहा इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है, हमारी जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है इसमें डिस्टर्बेंस होता है, तब जब दुनिया वो नहीं करती जब मुझे चाहिए, जब लोग वो नहीं करते जो मुझे चाहिए, या जो लोग वो कर देते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, जब सिचुएशंस वैसी हो जाती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मुझे गुस्सा आता है. इट्स बेसिकली आई हैव गॉट यूज्ड टू दिस वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, द वर्ल्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी, एंड व्हेन द वर्ल्ड इज नॉट द वे आई वॉन्ट देम टू बी, then I'm allowed to get angry. I have given myself the justification. Because first I gave myself the belief people should do what I want them to do. Then I give myself the belief if they don't do what I want them to do, then I'm allowed to get angry. And then I'm living my whole life with this wrong belief system. And it just goes on in a vicious cycle. तो कहीं ना कहीं इस cycle को अब बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ने दे, अभी रुक जाए,
0: ब्रेक देना,
1: ब्रेक नाउ. एंड इसके लिए इमिजिएटली क्या करना होगा, रिवाइंड कीजिए आज के सारा दिन में कि कब आपको गुस्सा आया. एंड गुस्सा डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप बहुत जोर से किसी पर चिल्ला दिए. गुस्सा कुड मीन जस्ट अ लिटिल डिस्टर्बेंस. गुस्से का लेवल अलग अलग होगा, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है. जहां थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो स्टॉप कीजिए अभी और चेक कीजिए वो जब गुस्सा आया था कौन सा बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा था.
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस टाइम तो अब याद रहने वाला नहीं है जब गुस्सा आएगा, लेकिन अगर जो इंसिडेंट्स हो गए हैं उनको चेक करें कि उस टाइम क्यों गुस्सा आया था, तो अगली बार जब कोई इंसिडेंट आएगा, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसे हो गई होगी माइंड में, आई विल बी मोर केयरफुल एंड आई विल चेक विच बिलीफ सिस्टम इज वर्किंग एंड आई विल बी एबल टू लेट इट गो.
0: वंडरफुल सिस्टर शिवानी कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको अगर हम कंटिन्यू करें, क्योंकि जरूरी ये है कि सबसे पहले इस बात को ये समझ लें कि गुस्सा बहुत अनहेल्दी है, मेरे लिए ही खराब है और मुझे अपने लिए सोचने के लिए इससे दूर होना जरूरी है। इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: गुस्से की जहां तक बात की जाए तो गुस्सा अभी तक हम ये मान रहे थे कि बहुत जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमने एक बात और जानी कि उसका कारण क्या है। आज इस थॉट को लेकर अपने साथ रखते हैं कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ना तो लोग कई बार एक्ट करते हैं और ना ही सिचुएशंस आती हैं, तो वो मुझे मुझमें एंगर क्रिएट करती हैं। इस बात को अपने साथ रखें और फिर ये कोशिश करें कि क्या सचमुच ऐसा ही हो रहा है, और हर बार की तरह अनुभव की कसौटी पर अपने आप को उतारते जाएं और जहां लगे कि हाँ ये कसौटी सही है, हम खरे उतर रहे हैं, फिर अपने आप को चेंज करना आसान हो सकता है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999934666, 09873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। गुस्से के एक कारण को हमने समझने की कोशिश की, और भी कई कारण हो सकते हैं। कौन से हैं वो कारण, क्या है जड़ जहां से गुस्सा पैदा होता है, और कितने प्रकार का गुस्सा होता है, ये सब जानने की कोशिश अपनी अगली कड़ी में करेंगे। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंट्री

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए, मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं, हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए। मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरी वन एल्स ऑल्सो, बिकॉज इट वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है, सो वाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside, and doing is what I'm doing outside. तो एक है being happy, and एक है doing something for getting happiness. तो एक है मैं हूँ खुश, और दूसरा है मैं ये कर रही हूँ ताकि मुझे खुशी मिले। तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया। सिंपल चीज, जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे, यू नो, हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें, ये होगा
0: तो मैं खुश
1: हूँ, तो खुश होंगी, यू नो, एक स्टूडेंट लाइफ से भी, इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ, लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट, या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना, स्कूलिंग खत्म हो जाएगी,
0: व्हेन आई विल बी अर्निंग ना, व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट, या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो।
1: सो व्हाइल दो स्कूल इयर्स, मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना, देन आई विल बी हैप्पी। जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी, विच मीन्स कि अभी
0: I'm unhappy.
1: अभी आई एम नॉट हैप्पी, बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी। तो फिर चलो, स्कूलिंग खत्म हुई, फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई, फिर हम प्रोफेशन में आ गए।

0: या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया. अगर मैं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस, दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी, बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट. क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी. तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में. इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है. आई डोंट थिंक दैट इट इज लाइक दैट. एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स. आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है. तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट. कुछ होगा तब खुशी मिलेगी, लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी. तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड. इन द प्रोसेस मेरा एक एक पल बीतता गया, हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा. कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी. अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है, अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है, हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड, लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंट है. एक सेकेंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा? हाउ विल आई फील? कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी? जैसे ही
1: आई विल बी वेरी यू नो आई विल बी वेरी फियरफुल.
0: एक्सैक्टली, दैट्स द पॉइंट. दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
1: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी,
0: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं? तो जैसे ही मेरी खुशी, क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर, लोगों पर, तो जितनी भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है, ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए, ये खुश है ना, ये संतुष्ट है ना, मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी. जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है, सारा दिन क्या है और इकट्ठे कर जाऊं, फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए, कहीं इन, अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं, तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा?
1: Of course, ये कि मेरा बॉस खुश रहे.
0: सी इट्स ऑलवेज फियर. तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे? इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए, इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं है क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है, इन चीजों पर डिपेंडेंट है. और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटा कर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूं मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है, नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू हाउ विल आई बी?
1: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन. यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
0: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी?
1: You will be stable.
0: I will be very natural. I will not be.
1: You will not be artificial. Yes,
0: yes,
1: you know.
0: See,
1: yes.
0: Because meri khushi aap pe dependent nahi hai. I can just be natural. I can be the way I am. Mujhe aapko khush karna nahi hai.
1: You know, we
0: mujhe
1: dar nahi hai. Hate to be dependent. You know?
0: We hate to be dependent, but actually hum sara din dependent hi hai. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है. इतनी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माई फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहे
1: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल? क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊं कि फिर मुझे अपने आप को ये रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूँ किसी के लिए भी वो मैं नहीं करूंगी?
0: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस. एक है जो मैं बाहर करती हूँ और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूँ, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ.

0: तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूँ बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूँ? अगर मैं डर में हूँ तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है? अगर मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरी हर छोटी बात पर आपको ये लगे, आप तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है? What is the energy of the interaction? ये बहुत important है. इसी पर आज हमारे fundamental जो relationships इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने strong नहीं है जितने होने चाहिए, हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज्यादा आज कर रहे हैं. Even if we look at parents and child, I feel कि when I was a child तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्यों, क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते. जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूं ताकि मैं आपको खुश कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे, अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूँ ना आपकी हर बात मान लूं, आपको जो चाहिए वो आपको दे दूं, आपको किसी तरह मैं खुश कर दूं, ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने के बजाय
1: नुकसान
0: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है?
1: Somewhere we need to check our own emotions, why we are doing it.
0: Absolutely. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रांग पहले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब यहाँ एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या, स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगे जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: तो इट मीन्स जब मैं इनडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
0: हर्ट ही है ना, ऑफ कोर्स हर्ट है.
1: मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना, तो फिर मैं कंप्लीटली
0: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए, तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विदड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है, अगर मैं खुश रहूंगी मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन आप पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना
1: अच्छा,
0: है.
1: एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ, ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ है, सपोज मेरा ही मूड ऑफ है, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो है वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली इवन इफ
0: एब्सोल्युटली. लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है. इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है. और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब यू नो, वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई? इट इज ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड मी विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा. फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी. फिर उसी तरह व्यवहार, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
1: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ, जब मैं घर आई या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है उनके साथ, तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. डिपेंडेंट आई वाज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई माई सेल्फ वॉज डिस्टर्ब्ड विद समबडी
0: एल्स, समथिंग एल्स. पर स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सपीरियंस किया, तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मींस कि हम डिपेंडेंट नहीं है. जब वो आपने सीख लिया तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी डिपेंडेंट.
1: इट विल बी विद ऑल और इट विल बी विद नन.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज द क्रक्स. इधर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, एंड इफ यू आर डिस्टर्ब्ड यू आर गोइंग टू बी मोर और लेस डिस्टर्ब्ड. यस, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी? हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो यू मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज है जो सबसे पहले सामने पहुंचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुंचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूं मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है, but I'm very clear कि intention क्या है, what do I feel for the opposite person, तो आपको वो बात hurt नहीं करेगी, क्योंकि वो hurt की energy के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है? क्योंकि यहाँ hurt नहीं है. लेकिन हम क्यों hurt बहुत जल्दी experience करते हैं? क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
1: वो दे उस intention से रहा,
0: intention से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास energy वो वाली है ना. तो अगर मेरे अंदर वो energy insecurity की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा. क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी. सो व्हेन यू आर स्टेबल आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलूं, इनको बुरा तो नहीं लगेगा. कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा. क्यों बुरा लगेगा? बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज. लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर. नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करती है,
1: सहज होते जाएंगे.
0: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा. अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
1: यू नो. सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं,
0: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है. तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीजों पर डिपेंडेंट है. आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ फ्रीडम
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यस,
0: इट कैन नॉट बी टुगेदर. फ्रीडम और डिपेंडेंसी कच्चे नहीं हो सकती. अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ तो देन हाउ एम आई फ्री. फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री.
1: होता यह है कि बहुत सी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं. आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है, मेरी बहुत सी चीजें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं. आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मेरी, मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है. तो अगेन दैट इज वाई द इनसिक्योरिटी.
0: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? द राइट एनर्जी. तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूँ, स्टेबल हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूँ मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं.
0: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते. आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा, कर रहे हैं, खुश नहीं है. क्यों? बोल नहीं पा रहे हैं. तो कम्युनिकेशन is really not there actually. Why? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared. कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका disapproval तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे. ये insecurity मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है. And then how can I ever be happy with so much of discomfort? That's why we realize कि ये सारा discomfort, ये सारा upheaval, ये सारी insecurity, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है.
1: I have created it. And in fact, अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, even if you know that once you're stable inside, अगर हम इसी unstability में, इसी जो भी hurt, anger, जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे,
0: it won't work. Again, तब it will not work. क्योंकि suppose मेरे को कुछ problem है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है. लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क. वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है. वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स. हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं.
1: तो मैंने बहुत अच्छे तरह से कहा.
0: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है. वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी. बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माय एनर्जी. मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक कर सकती हूँ. तो जो मैं वर्ड्स भेजती हूँ सामने, जो मैं एक्शन सामने करती हूँ, इट ऑल्सो गोज विद अ पैकेट ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टू सी. एंड उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि पहले कौन पहुंचता है.
1: एनर्जी पहुंच जाती,
0: एक थॉट क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड्स भेज रहे हैं, पहले ही सोच लिया पता नहीं कैसे दिख रहे हैं आज, क्या पहना हुआ है. ऊपर से बोला हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आज देखने में. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? देन आई विल से मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बात की है उनसे, पता नहीं उनको ही पता नहीं मेरी बात पसंद क्यों नहीं आई. एंड फिर हम कहते हैं मैं आपको नहीं समझ पाते, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड यू, आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस. कि मैं सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, बीच में कन्वर्टर लगाया हुआ है. सोचो कुछ और, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ट्रांसमिट करो, और ये एक्सपेक्ट करो कि सामने वाले ने तो सिर्फ यही रिसीव किया और जो मैंने बोला वो तो बहुत अच्छा था, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए. फिर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं वो अच्छे नहीं है, मैंने उनसे अच्छी तरह से बात की फिर भी
1: तो
0: उनको अच्छा
1: तो
0: नहीं लगा. देन द फोकस अगेन गोज आउटसाइड. जस्ट हैव टू चेक दिस.
1: यस, यू नो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी लर्न टुडे, इज कि हमें जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसे रिएक्ट क्यों कर, हम सिर्फ उनका रिएक्शन देखते हैं. वेरी ट्रू. और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो अगर वो हैप्पी है तो ऑफकोर्स, मतलब कोई अपना है तो हमारे किसी बोल से अगर कोई नाराज हुआ है या कोई दुख में है तो वी रियली नीड टू चेक कि हमने क्या किया था,
0: कौन सी एनर्जी भेजी थी साथ में।
1: यू नो समवेयर वी हैव टू सी, ये पेरेंट चाइल्ड में भी आ जाता है,
0: हर
1: रिलेशनशिप में इट कैन कम डेफिनेटली। तो आज जो बात हमारे सामने आई कि डिपेंडेंसी, मेरी अपनी हैप्पीनेस जो थी वो इसलिए बार बार ऊपर नीचे होती थी कि मैं अपने ही रिश्तों में कहीं ना कहीं बहुत डिपेंडेंट था। और दूसरी बात ये कि जब मैंने अपनों को भी परेशान होते देखा मेरी ही बात से, वो भी कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट तो करती ही है।
0: That's why, and जैसे ही वो अफेक्ट करती है फिर आई सेंड द नेगेटिव। सपोज मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल हूँ, मैंने नहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेजी, लेकिन आप हर्ट हो गए और आप रिएक्ट कर गए, वो रिएक्शन का मुझ पर प्रभाव तुरंत पड़ा क्योंकि डिपेंडेंसी है। फिर मैंने इमिजिएटली आपको कौन सी एनर्जी भेजी, फिर वो एक्सचेंज ऑफ
1: शुरू हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस है। इनफैक्ट इट्स सो फास्ट कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। तो इट कैन ओनली हैपन विद अवेयरनेस। वी रियली नीड टू चेक। कोई मन में सवाल उठता है तो या तो आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 01244-266-7000, 99993-44-55, 99993-44-66, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। जैसे शिवानी, हर बार हम ये कहते हैं कि जो भी हम समझ रहे हैं वो अभी तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम साइलेंस में बैठकर उस पर विचार करते हैं या उसको सोचते हैं तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठता जाता है।
0: जब साइलेंस में बैठते हैं हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और अगर रोज सुबह जब प्रोग्राम देख रहे हैं सभी तो वी वुड रिक्वेस्ट कि इसको सुनना नहीं है सिर्फ, यू नो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो जस्ट डोंट लिसन टू इट, जैसे आपने सारा प्रोग्राम सुना, लेकिन अपने अंदर अपनी थॉट्स के साथ अगर आपको ये थॉट्स ठीक लगी, द वे ऑफ थिंकिंग, तो उसको अपनी थिंकिंग के साथ रिलेट करना है, तब फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाना it will become simpler, don't have to do too much effort with that. तो जैसे जैसे प्रोग्राम देख रहे हैं साथ साथ उसको भी करते जाएं, और फिर रोज सवेरे उठकर कुछ मिनट्स अपने साथ बैठकर इसको फिर कर सकते हैं।
1: तो क्या हम अभी कुछ लम्हे जो है करें एक्सपीरियंस?
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने आप को देखे। आज दिन तक बहुत जगह खुशी ढूंढे, लोगों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में, सब जगह ढूंढते ही रहे इंतजार में कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे। आई नाउ अंडरस्टैंड आई एम अ हैप्पी बींग। खुशी मेरी अपनी नेचर है, मेरा अपना स्वभाव है। हैप्पीनेस इज व्हाट आई एम, हैप्पीनेस इज व्हाट आई क्रिएट। मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मैं ऑलरेडी खुश हूं। एज आई गो आउट टुडे एंड टुमारो टू वर्क, लेट मी जस्ट टेक दिस थॉट विद मी। I am a happy being, going to work and meeting people. And jaise hi is thought ke saath jaate ki I am already happy, to khushi fir mangne ki nahi, lekin auron ko dene ki, auron ke saath share karne ki shakti ban jaate. Tomorrow, instead of looking for happiness, let's give happiness. Om Shanti.
1: Om Shanti. In fact, ये equation हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। और आज इस thought के साथ कि मैं खुश हूँ, I'm a happy being, खुशी मेरी अपनी creation है, I can start giving. बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ और अभी करनी है, खुशी के कुछ और आस्पेक्ट समझने हैं, लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। ओम शांति।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आरती ऐसे ही एक किनारे पे खड़ी थी। वक्त के भंवर पैरों से लिपटे हुए थे, वक्त की गर्दिश तेज थी और पांव रोके नहीं रुकते थे।
2: Thank you.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम मिश्रा जी। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर भी हैं, मीडिएटर हैं दिल्ली से। रोमेश गौतम जी, आपको रेडियो मधुबन में और यशस्वी भारत इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू
3: सर। जैसे आप एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ आप फॉर्मर एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, जहां पे चीफ मिनिस्टर स्वयं आपसे सलाह लेते हैं, कानूनी सलाह। बहुत ही कम उम्र में आपने पद्मश्री पाया है और ऐसा कानून भारत में आपने लेके आया जो कानून से जो मदद लेना होता है एक आम इंसान को वो बहुत आसान कर दिया है। बचपन से आप ये ख्वाब देखते थे आपको एडवोकेट बनना है, या ऐसी क्या सिचुएशन थी जहां पे आपको लगा कि नहीं, हमारी भारत में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, या फिर क्राइम को कम करना है? क्या सवाल, क्या आपके अंदर ख्याल चलते थे?
4: देखो, ये तो मेरा एक बचपन का ड्रीम था जो मुझे लॉ का प्रोफेशन अडॉप्ट करना था। 4-5 साल की उम्र से ही मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को वकील बनना है, मुझे लॉयर बनना है। और मैंने किसी बड़े वकील को उस जमाने में देखा था और उनको देख के मुझे ये महसूस हुआ कि लॉयर का जॉब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है देश के लिए, देश के विकास में, देश के निर्माण में वकील का काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वकील बनना है। ये मैंने बचपन में 4-5 साल की उम्र में ठान लिया और उस एम के साथ ही पढ़ाई करते हुए फिर मैंने वकालत पास की। और ना केवल वकालत पास किया, वकालत में डिस्टिंक्शन हासिल किया डिग्री में भी, और पीएचडी किया। ये मेरा बचपन का ड्रीम। दूसरी बात रही कि जस्टिस की बात, तो जस्टिस के लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं कि जिनको जस्टिस, बहुत सारे कारण भी हैं कि नहीं मिल पाता है। कई बार रिसोर्सेज नहीं होते आदमी के पास, कई बार आदमी ऐसी जगह पर होता है कि वो उसको कोर्ट की एक्सेस नहीं कर पाता है। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक महसूस किया कि जस्टिस इज मेंट फॉर एवरीवन। सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूं कि उनको न्याय मिले। उनको इस हद तक कोशिश करता हूं कि जब उनका किसी का मुकदमा लड़ता हूं तो मैं अपना मुकदमा दिलो जान से लड़ता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि भाई ये मुकदमे में मैंने फीस ली है या नहीं ली, लेकिन उस मुकदमे को मेरा जीतना मेरा मकसद होता है, वही मेरा है।
3: ये आप सही कह रहे हैं कि आपके पास जो मुकदमा आता है उसको आपको जीतना है
4: जी,
3: लेकिन एक एडवोकेट न्याय के लिए लड़ता है या अपनी क्लाइंट के लिए लड़ता है?
4: इस बात में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे मतलब एंशियंट टाइम में माइथोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे तो कर्ण को ये पता था कि दुर्योधन गलत है। कर्ण को इस बात का एहसास था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन कर्ण क्योंकि दुर्योधन का दोस्त था तो वो दुर्योधन की तरफ से ही उसने लड़ाई की। तो जहां तक न्याय की बात है, हम चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय सबको मिले, लेकिन जब हम कोई भी मुकदमा किसी क्लाइंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा रोल यू आप ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि कर्ण वाला हो जाता है। तो वी आर कमिटेड टू दैट क्लाइंट और उसको जस्टिस दिलवाना या वो जो चाहता है वो जस्टिस लेने के लिए प्रयास करना, वो हमारा ध्येय होता है, वो हमारा मोटिव होता है और वही हम उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं। ये जानते हुए भी कि कई बार हो सकता है कि हमारा क्लाइंट हमको मिस रिप्रेजेंट कर रहा हो।
3: जी। जब आप लायर बनना चाहते हैं तो ये होता है कि हम न्याय के लिए लड़े
4: जी।
3: और सभी को इक्वली जस्टिस मिले
4: जी।
3: लेकिन जब आप एडवोकेट बन जाते हैं एक बार, तो जो क्लाइंट है उसके अनुसार क्यों चलना पड़ता है? ये आपने एक उदाहरण तो दिया है कर्ण और दुर्योधन, लेकिन उस कहानी में ही वास्तविकता है कि हम बुराई का साथ दे रहे हैं
4: जी।
3: जो शुरुआत का ये इंस्पिरेशन रहता है कि जस्टिस दिलाना, और जब प्रोफेशन में आ जाते हैं तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग या वो जो सपना है वो कहाँ चला जाता है?
4: ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि प्रोफेशनल एथिक्स की जहां तक बात होती है कि वी हैव ए कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर क्लाइंट, बिकॉज देर इज रिटन एग्रीमेंट तो कुछ नहीं है, बट देर इज एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन ए लॉयर एंड द क्लाइंट। ही साइंस वकालतनामा फॉर यू, ही गिव्स यू द पावर टू कंटेस्ट फॉर हिम, सो इट इज योर प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट विदाउट गोइंग इन टू एनी अदर थिंग, वेदर द केस इज फॉल्स, वेदर द केस इज राइट, यू हैव ए कमिटमेंट टूवर्ड्स योर क्लाइंट, यू आर डूइंग योर ड्यूटी। और लॉर्ड कृष्णा ने भी यही कहा महाभारत में कि आप अपना कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत रखिए। तो हम अपना कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी होता है, जस्टिस देना जो है वो जज का काम है। हम अपना प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा प्रयास हमारे क्लाइंट के लिए होता है, हमारा कमिटमेंट उसके साथ, तो हम उसके लिए काम।
3: सो सर, जैसे आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भारत में लेके आए हैं, उसको लागू कराया, उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा?
4: 1994 में कुछ मेरे क्लाइंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग थी, उनके कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए, इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट थे, और इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ से, स्विट्जरलैंड स्विस बैंक कॉरपोरेशन के साथ थे तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, बार्कलेज बैंक लंदन के साथ थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, और KfW जर्मनी उसमें था, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक फिनलैंड हेलसिंकी इन्वॉल्व था। तो उसमें कुछ फाइनेंशियल लोन्स हमारे होने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा आना था, उस पैसे को लेके कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ डाउट्स थे कि

का हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आंख में दिल

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा आंख

झरने झूमे छम छम पायल बाजे रामा हो हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

हम छत्ते गाते फिरा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो मनु?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज आप जल्दी से बताइए कि कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं मुझे।
1: पहले मुझे ये बताओ कि क्या भारत की टीम ने कभी कबड्डी में मेडल जीता है?
0: शायद जीता होगा।
1: अच्छा, फीमेल क्रिकेट टीम के 5 प्लेयर्स के नाम बता दो।
0: अब मुझे तो एक ही पता है, मिताली राज।
1: अच्छा, भारतीय हॉकी टीम का आखिरी मैच कब हुआ था?
0: वो तो पता नहीं, लेकिन आप आज ये मेरे साथ क्विज कॉन्टेस्ट क्यों खेल रहे हैं?
1: क्योंकि खेल जगत में भारत अच्छा कर रहा है। लेकिन सभी लोग अगर एक खेल के अलावा किसी और खेल की न जानकारी रखेंगे और न देखेंगे तो भला उन खेलों को बढ़ावा कैसे मिलेगा?
0: अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मुझे तो क्रिकेट का शौक भी है, पर फीमेल क्रिकेट टीम के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। और हॉकी, उसे देखने में भी मजा आता है। क्या इधर से उधर बॉल के पीछे भागते हैं सब खिलाड़ी?
1: हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है ये खेल।
0: तो चलिए, आज का मेरा होमवर्क तो मुझे मिल गया। अब आज की कहानी किसकी है वो भी बता दीजिए।
1: आज की कहानी है वासुदेव बलवंत फड़के की।
0: वासुदेव बलवंत फड़के जी की?
1: हाँ। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 ईस्वी में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरढोणे नामक गांव में हुआ था।
0: अच्छा।
1: वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारी थे। फड़के ने 1857 ईस्वी की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आजादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई थी। वासुदेव बलवंत फड़के बड़े तेजस्वी और स्वस्थ शरीर के बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक था। कल्याण और पूना में उनकी शिक्षा हुई।
0: अच्छा।
1: फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर ले और पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन फड़के ने यह बात नहीं मानी और मुंबई आ गए।
0: और फिर
1: वहाँ पर GRP में 20 रुपए मासिक की नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी।
0: अरे वाह।
1: 28 वर्ष की आयु में फड़के की पहली पत्नी का निधन हो गया। इस कारण उनका दूसरा विवाह करवा दिया गया। विद्यार्थी जीवन में ही वासुदेव बलवंत फड़के 1857 ईस्वी की विफल क्रांति के समाचारों से परिचित हो चुके थे। शिक्षा पूरी करके फड़के ने ग्रेट इंडियन पेंसुला रेलवे और मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट पूना में नौकरी की।
0: अच्छा।
1: हाँ, उन्होंने जंगल में एक व्यायामशाला बनाई।
0: अरे वाह।
1: जहाँ ज्योतिबा फूले भी उनके साथी थे। जानती हो ना ज्योतिबा फूले को?
0: बिल्कुल, उनकी कहानी तो आपने सुनाई थी हमें।
1: हाँ, यहाँ लोगों को शस्त्र चलाने का भी अभ्यास कराया जाता था।
0: अच्छा।
1: लोकमान्य तिलक ने भी वहाँ शस्त्र चलाना सीखा था।
0: लोकमान्य तिलक ने भी?
1: जिनकी कहानी तुम सुन चुकी हो।
0: बिल्कुल।
1: 1857 की क्रांति के दमन के बाद देश में धीरे धीरे नई जागृति आई और विभिन्न क्षेत्रों में संगठन बनने लगे। इन्हीं में एक संस्था पूना की सार्वजनिक सभा थी।
0: अच्छा।
1: इस सभा के तत्वावधान में हुई एक मीटिंग में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने एक भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अंग्रेज किस तरह भारत की आर्थिक लूट कर रहे हैं। इसका फड़के पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं नौकरी करते हुए भी छुट्टी के दिनों में गांव-गांव घूमकर लोगों में इस लूट के विरोध में प्रचार करते रहे।
0: अच्छा।
1: हाँ, 1871 ईस्वी में एक दिन सायंकाल वासुदेव बलवंत फड़के कुछ गंभीर विचार में बैठे थे। तभी उनकी माता जी की तीव्र अस्वस्थता का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि वासु यानी वासुदेव बलवंत फड़के, तुम शीघ्र घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद ना हो सकेंगे। इस वेदनापूर्ण तार को पढ़कर अतीत की स्मृतियां फड़के के मानस पटल पर आ गई और तार लेकर अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए।
0: अच्छा।
1: किंतु वहां उन्हें अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। उस अंग्रेज अधिकारी ने अवकाश नहीं दिया, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के दूसरे ही दिन अपने गांव चले आए।
0: अच्छा।
1: गांव पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनका मुंह देखे बिना ही तड़पते हुए उनकी ममतामयी माँ चल बसी। उन्होंने पांव छूकर रोते हुए माँ से क्षमा मांगी, किंतु अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार से उनका हृदय द्रवित हो उठा।
0: अच्छा।
1: इस घटना के होने से वासुदेव फड़के ने नौकरी छोड़ दी और विदेशियों के विरुद्ध क्रांति की तैयारी करने लगे।
0: अच्छा।
1: उन्हें देशी नरेशों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का रास्ता अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी।
0: अच्छा।
1: उन्होंने फरवरी 1879 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। धन संग्रह के लिए धनिकों के यहाँ डाके भी डाले। अब आगे की कहानी के लिए इंतजार करो मनु।
0: हाँ हाँ, मुझे पता है। वहाँ पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए आने वाले हैं ना, इसीलिए आप मुझे आगे की कहानी नहीं सुना रहे हैं।
1: हाँ, अब मुझे फुटबॉल मैच देखना भी बड़ा पसंद जो है।
0: तो ठीक है, आज मैं भी आपके साथ फुटबॉल मैच देखूंगी।
1: ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर देखते हैं।
0: हाँ, और आगे की कहानी बाद में सुनूंगी। थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

लाइफ कभी कभी एमलेस भी लगने लगती है, तो इसलिए लाइफ का एम ऑब्जेक्टिव बना रहे तो लर्निंग की भावना भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने को, है ना। तो आप भी मेरी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और फिलहाल मिलूंगी आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो कुनेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुनेरी आवाज।
1: ओह रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियाँ।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो आस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं, बार बार हम यही कहते हैं आपकी क्या मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी, अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है, और अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन अ सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: ये कुछ गलत नहीं हो
1: ये
0: रहा है,
1: ये गलत नहीं हो रहा है, ये नेचुरल है,
0: डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बारे में, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजिली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीव सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीव सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीव सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना?
1: तो अगर मेरा बिलीव सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसी क्रिएट होगी वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आगे। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहाँ पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल, जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता,
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ, बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ, उसी क्वालिटी के फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे, तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माय नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माय नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो, तो एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूंगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: ओह अमेजिंग, यू नो, गुस्सा आएगा मतलब क्योंकि कोई और कर रहा
1: था, सी हाउ डीप रूटेड इट इज, हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया, लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस। तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा, और फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा। लेकिन गुस्सा जायज है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माय थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली
0: अकॉर्डिंग। अगर हम देखें बिलीव जो है वो एक थॉट ही तो है।
1: इट इज, बट अ वेरी,
0: वो इतना रीस्टेटेड,
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस पर
0: छोटे छोटे और थॉट निकलते हैं। ओके,
1: इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे। अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे? अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे। हो सकता है, लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया, इट विल नॉट वर्क।
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ। My belief leads me to destiny.
1: Yes,
0: basically.
1: It is. Belief creates thoughts and then thoughts leads to destiny. Absolutely.
0: तो समवेयर ये जो बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं, कई सारे हमने बिलीफ लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था, आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है। जो हमने कई चीजें देखी थी, जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली कि मेरी हैप्पीनेस किस किस पर डिपेंड कर रही थी ना। जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है, तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरे डिपेंड करती थी। मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है।
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। दो बिलीफ सिस्टम,
0: साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पर। मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है, मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है। साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने, तो वो बने तो लाए, तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और ही। तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते। नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रूथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम,
1: दिस इज द ट्रूथ। एक है बिलीफ

0: इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा, तो ये डीप रूटेड मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं। एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है, या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म्स के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं, यू नो दिस एक्चुअली गिव्स मी व्हाई वी गो फॉर मूवीज, यू नो व्हाई वी वॉच टेलीविजन,
1: व्हाई डू वी वॉच,
0: बिकॉज इट गिव्स अस समवेयर, यू नो वी फील गुड।
1: सी व्हाई डू वी वॉच टेलीविजन या व्हाई डू वी वॉच अ मूवी या व्हाई डू वी वॉन्ट टू गो फॉर अ हॉलीडे, कि कहीं ना कहीं जो मेरे थॉट्स चल रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत प्लेजेंट नहीं है मुझे, देन आई से
0: टेक अ ब्रेक, यू नो एवरी टाइम यू स्ट्रेस्ड आउट गो एंड टेक अ ब्रेक।
1: एब्सोल्युटली, तो टेक अ ब्रेक क्या करना है एक्चुअली मुझे, मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो थॉट्स हैं वो चले जाएं एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलीडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फायदा है। हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं एक्चुअली। अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं हमारा मन वो हमारी थॉट, सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला ऐसा, मैं कल अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग, तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई, तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाली थॉट्स थी सारी, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए आई फॉरगॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी। आई हैव टू बी वेरी क्लियर, प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी, वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया, जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाली थॉट्स
0: वापस आने वाले,
1: वापस आ जाएंगे। कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलीडे पर जाएंगे, सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क, क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई, एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग उसके लिए
0: दूर करने के लिए
1: भूलने के लिए, सी दैट इज द डिफरेंस, एक है भूलना एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना, तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के ऊपर ओवर पावर करता है, तो एक यस द बेनिफिट इज देयर कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने वो थॉट्स को भूल जाती हूँ, लेकिन साथ साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर मीडियम मेरे माइंड के ऊपर ओवर पावर कर देता है। एक तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ ये सीखने की कि कैसे मैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लूं, ताकि मेरा मन के ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं हो, लेकिन जितनी देर हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी भी दिन अपने आप को वॉच करिएगा कि आपका माइंड टोटली उसके अंदर उसके साथ हो जाता है, अगर वहां कोई रो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, वहां कोई लड़ रहा है उसका इफेक्ट
0: कम्प्लीटली हावी हो चुका होता है।
1: अब ये क्या हो रहा है एक्चुअली कि मेरे मन की अपनी जो पावर है थॉट क्रिएट करने की वो फॉर द टाइम बीइंग पूरी बंद हो चुकी है, ये सिचुएशन जो इस टीवी स्क्रीन पर आ रही है ये सिचुएशन मेरे मन की थॉट्स को क्रिएट करती है, यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स, दिस इज वेयर, बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ, वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, तो इतना मेरा मन पूरे उसके अंदर इनग्रोस्ड हो जाता है, तो उतनी देर क्या होता है मेरी माइंड की क्रिएटिविटी जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास, मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत

0: जरूरत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं, लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं उतनी देर हमने क्या किया, अपनी मन की पावर को दबाते गए। तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है, लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं।
1: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
0: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स। क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें, और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को खत्म करते जाते हैं। तो जहां तो हम एक तरफ से बात करते हैं कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है,
1: पर उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्व्ड एक्चुअली, चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं, या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं।
0: यस,
1: तो एक स्टिमुलेंट है, एक कहीं ना कहीं व्हाई वी लाइक इट सो मच,
0: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर, एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है, आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क, जैसे कि मेरे सोचने का काम
1: वो करने लगता
0: है, वो करने लगता है, मुझे नहीं करना,
1: वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके।
0: सी नाउ दिस इज अ गुड वन, कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है, अब यही थॉट प्रोसेस
1: खाना के साथ नहीं बनाना है मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है, वाह, यस।
0: तो मुझे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, समवन एल्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि वो समवन एल्स हैज टेकन ओवर माई होल माइंड पावर। तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
1: सारे इमोशंस को जी लिया। yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया है।
0: सर से अब क्या, लेकिन विच इज ओके, आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे, लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ होंगे हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इन टू माई लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। व्हाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर, सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया,
1: इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका हैबिट बन जाती है, you know, आपके माइंड की
0: थॉट को क्रिएट कर रही है ना। आप एक पर्टिकुलर सीरियल, एक
1: कार्टून देख रहे हैं बच्चे कंटिन्यूअसली,
0: अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है, यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है, तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स, अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई, और हर रोज देखते देखते देखते हर रोज देख रहे हैं, तो वो मेरा क्या बनता जा रहा
1: है,
0: तो वही मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है, तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया।
1: ओह, वी रियली नीड टू सी एक्चुअली, इफ आई रिपीट इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल फॉर मी, कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो, राइट? देखिए मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी। और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज करने की जो पावर है उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया।
0: एब्सोल्युटली, एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है,
1: क्वालिटी,
0: इट इज हार्मफुल, यस, एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं। जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है। अब मेजोरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स, अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच।
1: और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लग गया कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है,
0: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माय थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
1: होना शुरू हो
0: जाएगा, क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया। टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट्स?
1: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं हर रोज चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है,
0: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम. क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहाँ हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था. लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा
1: है, तो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका सब कुछ,
0: इट इज अ डायरेक्ट
1: हाइलाइट, ग्लैमराइज किया जाता है.
0: एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
1: यू नो इनफैक्ट आई हैड दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. पैसा इज सिन. And this is what the belief system had because of the films.
0: True, but which is not true.
1: Of
0: but
1: course,
0: actually,
1: but I understood it now.
0: Yeah. So this is not true. So कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, see जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
1: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
0: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता
1: है. हम कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक.
0: अब अगर मैं इतनी देर टीवी, एक घंटा भी देखा, सपोज दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवरपावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद, माइंड तो नंब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है, उसने वो एक घंटे के लिए कंसंट्रेट
1: करना, उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
0: नॉट वेरी इजी. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है. तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है. एंड टूडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
1: तो कुछ हम सब इतने अच्छा. अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो ही जो मुझे सचमुच में आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व, यू नो, मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थे. लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच भी नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
0: लेकिन फिर भी हम सब बैठ कर देख
1: रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको.
0: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू नो, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार.
1: तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए भी उसे देख रहे हैं.
0: Somewhere we will have to understand कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं. आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है. यू नो कि दिस इज ओके एंड इन फैक्ट उसको इतना जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. एंड जितना हम उस तरह का इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ेगा.
1: और सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माय माइंड. हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा, इसने देखे तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट यू नो अप्रूविंग.
0: Yes, we do. And then our mind starts taking that, na? वो हमारे अंदर फिर, आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेसअप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं. एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है तो हमारे घर में बच्चे बैठ कर उसको देख रहे हैं. कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इश्यू बना दें घर पे. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने दिया था. और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली. एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए. और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ, तो फिर आई विल आल्सो वांट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसे. बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है.
1: बॉटम लाइन वॉज खुशी,
0: खुशी के लिए हो रहा है. तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
1: क्वेश्चन. इंडस्ट्री इज गिविंग मी हैप्पीनेस, आई हैव टू रियली रियली चेक दिस.
0: एंड इसको कहीं ना कहीं घर में एक कल्चर क्रिएट करना होगा कि क्या हमने वॉच करना है और कितना उसको वॉच करना है और कितना उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट.
1: इनफैक्ट अब हमें टीवी देखना ही है, हमें पिक्चर देखनी है, कम से कम हम ये तो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें. यू नो दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक. एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट. यू नो देयर इज अ लॉजिक. टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी. अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए, आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पर जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है. आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपना कंट्रोल देते जाते हैं फिर. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. और आपसे हम विदा लेते हैं लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूँ उन्हें. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन, नाउ इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुंच रहा है, आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफर पर चले, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेस भेजते हैं। और सबसे ब्यूटिफुल चीज जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि यू नो, कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे, और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट and which is a very big achievement, you know, कि it just goes to prove कि जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया है।
0: अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हमारे साथ भी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो एक कितना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नजर आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है।
1: हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है, ये डायरेक्ट इस समय, it's not just to say it but it's something to be experienced, ke ye direct निराकार परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी यू नो शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करे, यू नो, बिकॉज I had also read so many books and listened to so many people, but वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कंफ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे यू विल रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी
1: और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते। और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो वो हमारे लिए इतना इजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज डन. तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ भी मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद के मेरे साथ में. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल. तो आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज्ड है, वो एफर्ट करती भी तो उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है.
0: सिस्टर शिवानी, एक और बात, अभी हमने क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है और ये सबसे सुंदर बात है. फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशंस सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी जरूरत लगती है.
1: हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे, और वो रोज पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज डलती जाएगी, और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही. एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें. अब दूसरा है, अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है. हमें नॉलेज और पावर दोनों चीजें चाहिए. अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. अब कई भाई बहने हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज वेयर इट विल बिकम वेरी इजी. सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहां बहने हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं. हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज लाइक अ चार्जर. आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगी. अब यही चीज को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा, यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहां हेल्प करने के लिए होंगे, इट जस्ट बिकम सो इजी. तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज जा पाए तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर रोज नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज.
0: इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश जरूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है. तो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव, हम कहां खुद खड़े हो.
1: 2 महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहां पहुंच जाएंगे. यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है. 10 दिन कर ले वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट. फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा. उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा. इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन. जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम ना होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते. भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, एक या दो बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा. तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे. इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है. हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है. तो वो मेरे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा. तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज बढ़ा रही है, why will I not take up time for that? I will definitely go for that.
0: Okay, so it's a promise to ourselves actually. एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद.
1: It's only for those who want to do it. See again, it's not that you have to do because there's no such thing as have to go to anywhere. लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, then that is the step.
0: वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है. और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं. What exactly is emotion? You know, मतलब क्या है वो बेसिकली.
1: आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. लगभग लेट्स से 10 years बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है. उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं. IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो. तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, यू नो एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं. तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है दैट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस जो कि इट्स वेरी गुड. लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा बाहर बाहर बाहर की तरफ जहां जाते गए तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया. वी वेंट लाइक दिस. आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा है सब एक दूसरे से. पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, यू नो, लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी. आज हम एक सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, एक सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते. तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचे तो उसको कहेंगे समवन हु इज अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू नो अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है. आई नो एवरीथिंग कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस. वो सब पता है, स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है
0: मैं.
1: See? तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है. मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं. एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं. एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड. सी दैट इज हाउ इट हैपेंड. क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे, और बाहर जाने लगे और अंदर से और दूर होते चले गए.
0: क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की. बाहर हर चीज का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर बात का आंसर मिल रहा था.
1: बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, यू नो इंस्टेंट. बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है. तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. अब वो अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा. बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu, तो शरीर को खुशी कहाँ से मिलेगी? फिजिकल चीजों से मिलेगी। शरीर की लाइफ कितनी है? बस इतनी है। तो इतने में मुझे सब कुछ बटोर लेना है, तो आई जस्ट वेंट फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट एंड सब कुछ मिल गया, लेकिन खुशी नहीं मिली, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड। शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कंफर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि हु एम आई,
0: व्हाट रियली हैपेंड,
1: व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, खुशी कहाँ से मिले, मेडिटेशन, यू नो सी, ये सिर्फ अभी होने लगा, बिकॉज हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, सो नाउ वी रियलाइज्ड कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी। एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे, इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं प्रोफेशनल लाइफ कर लो फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना, बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए।
0: इनफैक्ट एक और अभी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट।
1: या हाउ कैन यू से दैट, इट्स लाइक सेइंग यू नो फिजिकल मेंटल, ये भी तो दो स्तर है, तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल। क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज, पर्सनालिटी है वो, एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है। सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो, इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ वो और भी ज्यादा अच्छी होती चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग वेरी बिग, अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर।
0: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू नो, बिकॉज़ अब हम उस दौर में हैं, सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो कहीं कितने कल्ट्स और कितने, इतना सारा है, इतना कंफ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया है कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा लेकिन अंदर वही इतनी कंफ्यूजन है। हाउ टू एक्चुअली यू नो सी व्हाट इज द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड,
1: क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं।
0: हाँ, और बिल्कुल बोल रही है वही भाषा बोलने लग गए हैं
1: क्योंकि पढ़ ली ना।
0: हाँ,
1: पढ़ ली,
0: सुन ली,
1: सुन ली। अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, सुन रहा था और उसी को कर रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था। अभी उसी की आदत पड़ी हुई है तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं। तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक, दैट प्रूफ has to come into me, but I just read it, मैंने अपने friends के साथ discuss किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी book है, close the book and finished, and then I go to the market and I buy the next book, but I'm not using it. तो ज्ञान is not just reading, listening and discussing. ज्ञान मतलब awareness, क्या आप, इसीलिए emotional intelligence मतलब awareness of मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं internalize कैसे करूं? एक सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड वन वीक टू वर्क ऑन इट, इट्स नॉट दैट सिंपल, लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है। तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माय इमोशंस, माय फीलिंग्स, अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स। अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता, तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू। तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर, जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई विल शाउट एट एवरीबॉडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो। लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर। और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस।
0: इफ यू टॉक अबाउट इमोशंस, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय इमोशन? बिकॉज इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशंस को भी बहुत अभी भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि मेरी इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ मैं, या
1: फील करता हूँ, सी मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ, दैट्स ओके। इमोशंस डिफरेंट, फीलिंग डिफरेंट। अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज कर लेते हैं कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे टोटली
0: emotion, being emotional and having feelings is a totally different thing.
1: Yeah, totally different thing. Abhi, being emotional is even taken in a very positive sense. Like we said, being sensitive. You know, being sensitive. Hum itne, I'm very emotional. Ki kya mere paas mere emotions pe koi control hi nahi hai. Koi ro raha hai to main bhi ro deta hoon. So that's not a strength, actually. It just shows ki aap kitni jaldi
0: deplete
1: ho jate hain. कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। इमोशंस वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वो टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे, दे थिंक इट्स हेल्दी क्रिएशन
0: एक्चुअली,
1: या बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर हम उसको समझते हैं एट अ डीपर लेवल, तो इमोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस इन द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस, विच हैपन्स वेन समथिंग और समवन टू विच आई एम अटैच्ड इज थ्रेटन्ड और मूव्ड। सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप आए और आपने ऐसे हाथ मारो और ये कप टूट गया। इफ दैट कप इज वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में दैट फ्लावर वाज इज वेरी प्रेशियस टू मी, या ये क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट, तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माई अटैचमेंट ये कप था और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया, और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दैट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यू नो, माई रिलेशन, समबडी आई एम वेरी क्लोज टू, समबडी आई एम वेरी अटैच्ड टू, उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है आई एम ओके, एनर्जी इज ओके, उनको कुछ हो गया एनर्जी यहां डिस्टर्ब, क्योंकि अटैच्ड गॉट डिस्टर्ब, आई गॉट डिस्टर्ब। इमोशन हमेशा एक डिस्टर्बेंस के रूप में क्रिएट होगा, एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, इवन डिक्शनरी में अगर आप देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन, इट सेज एजिटेटेड माइंड, एब्सोल्युटली, बिकॉज स्टेबल था लेकिन कहीं कुछ हुआ और यहाँ एक एजिटेशन शुरू हो जाती है। और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार की इमोशंस क्रिएट करते हैं, सारा दिन में हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जस्ट कीप वॉचिंग, इट्स हैपनिंग एवरी टाइम। सारा दिन में चेक करें कि ये डिस्टर्बेंस कितनी बार होती है, कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं, अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है, आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ, किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड, क्यों, क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया, तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी। सो वन डे जस्ट स्पेंड इन दिस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी टाइम्स इट गोस, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सो ऑफन। इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए, क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बींग, क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है। अब जब हम अवेयर होते जाएंगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, नाउ आई विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इट,
0: एंड बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू दैट इमोशन द अवेयरनेस विल स्टॉप मी।
1: अभी पिछले एक दो मास में हर रोज टेलीविजन पर शाम को जो मैच आता था क्रिकेट मैच, विच इज ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश और मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी मैच्योर पीपल, ग्लूड टू दैट टेलीविजन एंड उनके इमोशंस, यू सी. अब कोई कहेगा बट दिस इज गुड,
0: यूफोरिया,
1: इट्स हेल्दी, इट्स वेरी अनहेल्दी, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को एक मिनट ऐसे, क्योंकि एक मिनट एक सिक्स हो जाएगा तो एक मिनट कोई आउट होगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी एक मिनट बहुत हाई और फिर एक मिनट एकदम लो, और वो रोज, क्योंकि आप उस यू नो वंस इन अ व्हाइल इज ओके, बट बिकॉज ये दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप रोज देख रहे थे उसको दो घंटा उतनी देर, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन,
0: क्योंकि वेरी टायरिंग
1: इट इज, क्योंकि आप इट इज टायरिंग, यस, लेकिन वो रोज होने से क्या हुआ कि आपके मन को उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है,
0: देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर,
1: यस, एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्टिम्युलेंट व्हिच विल क्रिएट दैट डिस्टर्बेंस एंड दैट इफेक्ट्स द बॉडी आल्सो, क्योंकि बॉडी में भी केमिकल्स हो जाते हैं, तो बॉडी को भी आदत पड़ गई है, तो नाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर things outside to create that emotional disturbance.
0: So, Shivani, I'm amazed, you know, every time we pick up a topic, there's something which, like, जिसे हम ये सोच रहे होते हैं कि वो normal है, वो सहज है, वो जिंदगी में होता ही है, ऐसा ही होता ही है, it comes out कि it can be different, actually, you know. And वो जो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम पूरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे कंटेन करके हम एक बेहतर जिंदगी जिसे हम तलाश रहे हैं उसे पा सकते हैं. इस पूरी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे. आज के इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: इमोशंस और फीलिंग्स, अभी तक हम इसे एक ही मानते थे, हमें लगता था कि अगर हम इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है, अगर हम खुश हो पाते हैं या दुखी हो जाते हैं किसी को देखकर तो वो भी, कोई अगर दुख में है तो वो, अगर हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं और हम खुद रोने लग जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो समवेयर वील हैव टू एक्चुअली चेक कि हो क्या रहा है. और जैसा कि सिस्टर शिवानी ने आज कहा है कि एक दिन अपने आप को देते हैं और देखते हैं कि कितनी बार हम ये जो यो-यो होता है हमारे इमोशंस के साथ, हमारे पूरी जो स्टेबिलिटी है उसके साथ, उसे चेक करें और जानने की कोशिश करें कहाँ कहाँ हम ऊपर नीचे हुए हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। संत कबीर दास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना गया है। कबीर निष्कपट, फक्कड़, आडंबरहीन और वीतरागी जीवन जीते थे। आपाद मस्तक प्रेम में डूबे हुए कबीर ने पंडित, शेख, अवधु और योगी सभी पर आक्रमण तो किया, मगर बिना किसी बदनीयत के। पूजा, नमाज, हज और तीरथ से उनका कोई सरोकार नहीं था। बड़े ही सहज रूप से कबीर ने कहा था कि हम वासी उस देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उनके लिए प्रेम परम पुरुषार्थ है।

भाषा कबीर की चेरी थी, मगर उन्होंने कभी भी शब्दों का आडंबर नहीं रचा। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कबीर न तो काव्यगत रूढ़ियों के कायल थे और न ही जानकार, फिर भी यूं लगता है जैसे उनके लिखे हुए सहज दोहों में सारे जग का दर्शन समाहित हो गया हो।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कबीर ने विलक्षण अलख अगोचर अगम्य और प्रेम पारावर भगवान को राम कहकर संबोधित किया है। राम से उनका अद्भुत रिश्ता रहा। वे स्वयं को राम का कुत्ता मानते थे। वे कहते थे, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। पर राम है कहां, जरा कबीर से पूछिए।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे उमेश तरकसवार, वीनस तरकसवार, निखिल, कमलेश। संगीतकार थे उमेश, वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ट्रैक बना हुआ है, अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बनी गया ना, अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
1: थैंक यू सो मच
0: सिस्टर। मैं वो ही लाइंस दोबारा पढ़ना चाहूंगा जो पिछले एपिसोड में पढ़ी थी। वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आवरसेल्व्स लर्न इट और इग्नोर इट। नो वन फोर्सेस अस, नो वन डिसाइड्स फॉर अस, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर।
1: ब्यूटिफुल।
0: वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर।
1: परफेक्ट। इसको जितनी बार बार बार भी हम सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस पे मंथन करेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी आती है हमारी कितनी पावर है, औरों की कितनी पावर है। वन, जब हम कहते हैं कि यू नो ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं, विक्टिम मोड में जाते हैं, सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ, यू नो मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ, एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है।
0: बहाना।
1: बहाने ना, ब्लेम गेम में गए ना, विक्टिम, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग, दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है। वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड।
0: ये वाला तो मैं एंगल सोचा ही नहीं था।
1: ये भी तो समझ में आ गया ना,
0: हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो नया एंगल आ गया।
1: बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर,
0: वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था।
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना।
0: अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा,
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात।
0: हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट,
1: दैट विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। हम ये समझते हैं, सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली, एक्सट्रीमली पावरलेस हम जो हैं, उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं। ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते वैसा। हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं। एंड दूसरा, जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है, तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे पेरेंट बच्चे को, हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने उनको नहीं बदला, हम नहीं किसी को बदल सकते। ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है, वी ईच डिसाइड हु वी आर, वी ईच डिसाइड हु वी आर, नोबडी कैन टेक मी ऑन ईदर पाथ दिस वे और दैट वे।
0: यू मीन टू से, अगर मैं, जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को आई लाइक दिस, डोंट वेयर दिस, वेयर दिस, तो अब मैंने बदला उसको या शी डिसाइडेड?
1: शी चोज। आपने तो राय दी, शी चोज।
0: तो मैंने बदला नहीं
1: ना। वी कैन नॉट चेंज एनीवन। चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी, उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक पेरेंट बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या फ्रेंड फ्रेंड्स को, कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस, सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो। ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी। सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी। सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं, उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया ना। उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है।
0: ये बात सही।
1: अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट, कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया। वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है।
0: थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी।
1: थर्ड ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए, क्या आप खुश रहे मेरे से, आप नाराज ना हो, विच कुड हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, विच कुड हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर एट वर्क, इट कैन हैपन बिटवीन एनी टू सोल्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल. मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है. अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है. अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूं, या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है इवन दो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूं क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उस रीजन से करना. और अगर वो चीज मैं कंफर्टेबल नहीं हूं या मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं, अगर मैं ये करती हूं तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है, नथिंग. बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का इट्स राइट फॉर मी. दूसरे को खुश करना इफ इट्स नॉट राइट फॉर मी, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है. तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो कौन किसको चेंज कर सकता है.
0: सही बात है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं. किसी ने फ्रेंड ने पूछा व्हाई आंटी वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो. बोलते माय हस्बैंड डजंट लाइक. लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको, बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, तो उससे पहले ये वाला काम मेरे से मत कराइए आप, मैं झूठ वाला नहीं करूंगी.
1: सिंपल, ये ब्यूटीफुल है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हर बात मान के, कहना मान के आपके अनुसार चलना है. जो बात सही लगेगी वो करेंगे, जो बात सही नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे.
0: उन्होंने कहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसमें, नहीं कर सकती.
1: आत्मा को ये चेक करना है मैं किस में कम्फर्टेबल हूँ, मैं किस में कम्फर्टेबल नहीं हूँ. कोई और आत्मा डर के या खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती फोन पे, ये भी तो करते हैं हम एक दूसरे के लिए. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल. दिस इससे हमें पता चल जाता है कि मुझ आत्मा की कितनी शक्ति है और कितनी मुझे अभी और बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है. लेकिन कोई और आत्मा होती वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारे जीवन ये कहती क्या करूं, झूठ बोलना पड़ता है. मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, विच इज अ विक्टिम फीलिंग विच मेनी ऑफ अस गिव टुडे.
0: 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास पे हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी. एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहां बार्गेन नहीं कर सकते. और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है, ऊपर नीचे ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ये. तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी,
1: पावरफुल सोल. दिस इज द साइन कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संग का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना कुछ समय. इट टेक्स टाइम यू नो, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है. लेकिन उस फेस को भी क्रॉस करना है. उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा. लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे जहां इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है.
0: फिक्स के साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना,
1: यही तो है ना,
0: डुप्लीकेट माल तो नहीं देता.
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है, लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल कि इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है। ये चीज इसने अभी एक्स प्राइस बोली, 5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया। ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी। हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल। हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में, दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं,
0: ठीक है,
1: हम पर भी, संघ का जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी, ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा। सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन
0: मेरा,
1: उस आत्मा का होगा। ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं। लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, फाइनल डिसीजन उनका है। सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम, कि आई एम बिकॉज व्हाट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल। ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा। हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जहां अपनी बात आती है अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कह रहे क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं। जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है, तो हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है।
0: मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था, मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरुजी मुझे शांति चाहिए, गुरुजी मुझे शांति, फाइनली कि एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर,
1: सिंपल,
0: तो मांगते ही रहता है शांति, कर्म कर करता है शांति के।
1: अब ये इसी लाइन को देखते हैं, उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति के कर्म करें, सिंपल, राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट्स से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो, आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल विजिबल चेंज आया, राइट, लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं, और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है, उस महात्मा की, संत आत्माओं की, पेरेंट की, फ्रेंड्स की कितनी पावर है, राय दे सकते हैं, फुल स्टॉप, फिनिश्ड, दैट्स वेयर इट एंड्स, बी बेटर नो दैट, दैट्स वेयर इट एंड्स।
0: ये संत आत्मा की आपने जो बात कही अभी, कि अगर वो समझे कि मैंने इसको ठीक किया, फिर वो सबको छुड़ा दे,
1: हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको चेंज कर दे, एंड जिसको जो बोले वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो कितनी पावर है। अब यही चीज हर पेरेंट को समझने की भी कोशिश है कि पेरेंटल रोल और इन्फ्लुएंस कितना है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, वर्क प्लेस, हम सोचते हम जैसा चाहे, इवन इन एन ऑफिस एक सीनियर ये फील करेगा मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे लोग हो जाने चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं जैसा चाहूं वैसे सब चलने चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन. हर आत्मा, वो कोटेशन, डिसाइड्स हु दे आर. हमारा रोल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑल्सो हाउ, राइट एडवाइस, सही राय, और उससे भी ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस, सही वाइब्रेशन. अगर जिन्होंने आपको कहा कि तुम शांति के कर्म तो करते हो, मतलब आज से शांति के कर्म करो, राइट?
0: क्या शांति के कर्म करते हो, जो शांति मांग रहे हो,
1: लेकिन वो बात का प्रभाव भी तब पड़ेगा अगर वो आत्मा खुद शांति के कर्म करती है तो. नहीं तो वो तो बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. चेंज तो कर ही नहीं सकते, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा. अगर हम एक बात बोल रहे हैं लेकिन हम उसको लिव नहीं कर रहे, तो वो बात तो ऐसे ही उड़ जाएगी.
0: वही बात होगी ना कि मैं सिगरेट पियो, बच्चे को बोलो नहीं पियो.
1: yes.
0: मैं एक बच्चे को बोलू कि बोल दो डैडी घर पे नहीं है फोन पे. yes. और बोले तुम झूठ मत बोलो, वही बात होगी.
1: so, कितनी पावर है. वन, वी डोंट हैव पावर टू चेंज पीपल. डेफिनेटली वी हैव पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल, बट दैट पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल विल ऑल्सो बी देयर ओनली इफ वी आर लिविंग वॉट वी आर रेडिएटिंग एंड वॉट वी आर सेइंग टू देम. नहीं तो पावर टू इन्फ्लुएंस भी नहीं है.
0: दिस इज अ वेरी वेरी वेरी
1: पावर टू इन्फ्लुएंस भी नहीं है फिर तो.
0: मतलब जो भी, अगर सपोजिंग मैं बच्चों को कुछ बोल रहा हूँ तो पहले मुझे वो करना चाहिए. वो मैं करता हूँ तभी जाके उनको असर होगा.
1: पावर टू इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना उस बात का, क्योंकि उस बात में पावर नहीं है. कि किसी की बात को हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एंड मुझे जैसे टच हो गई वो बात, मुझे मेरे दिल को छू गई. नहीं बोलते हम, दैट थिंग जस्ट हिट मी व्हेन दैट पर्सन सेड दैट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्होंने बोला. अच्छा, कई बार हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने इतनी बार सुनी है, मुझे तो पता है ये बात, कितने लोगों ने मुझे आज तक बोली थी, कितनी जगह मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कही ना तो मुझे जैसे कि जस्ट हिट कर गई. वो क्यों हिट, किसकी बात करेगी? हिट वो बात करेगी जो पावर के साथ आएगी. और पावर के साथ किसकी बात आएगी? जो इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको आपने भी एक बार कहा था कि जो तपी हुई बात आएगी, उसके अंदर पावर होनी चाहिए. तप मतलब क्या? तप मतलब उस बोल में शक्ति, उस बोल में कितनी पावर है. नहीं तो हम किसी को एक अच्छी बात कह भी रहे हैं, अच्छी राय दे भी रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं. तो इन्फ्लुएंस तो वाइब्रेशन का ज्यादा होगा ना, बोल से ज्यादा.
0: जैसे किसी को मैं थर्ड पार्टी की कहानी या 100 साल पुरानी कोई कहानी सुनाऊं और आप बीती सुनाऊं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ बोलूं, तो वो भी बंदे को मेरे इमोशन के साथ वो एक हो जाता है.
1: अगर मैं सैड है ना,
0: क्यों मैं सैडनेस में, तो उसका भी चेहरा ऐसे हो जाता है. और पिक्चर की सुनाओ तो ऐसे. अच्छा अच्छा,
1: जब आप पिक्चर की सुना रहे, सपोज आप मुझे यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट सुना रहे, एक मूवी सुना रहे, तो सिर्फ वर्ड्स है उसके बारे में, वाइब्रेशन नहीं है उसकी.
0: ये वाला तपा हुआ ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा स्वयं.
1: तपा हुआ मतलब वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस.
0: हाँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस.
1: वाइब्रेशन उसकी आनी चाहिए ना, वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है.
0: स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं कई बार लेक्चर में जाता हूँ सिस्टर, जो हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, वही अगर आदमी खड़ा होकर रट्टू रट्टू मार के वो बोलते हैं तो मुझे नींद आ जाती है. ऑर्डिनरी आदमी भी जो बिना कागज के, बिना उसके, जब तपा हुआ अपना तपस्या वाला ज्ञान सुनाता है शक्ति से, ऐसे मेरा पूरा एक एक वर्ड सुनाई देता है.
1: एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है. सीख तो हम किसी से भी सकते हैं. सीखने के लिए हमें कहीं जरूरी नहीं है ऐसी जगह जाना है. सीखना मतलब दूसरों के गुण, दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होकर उस गुण और संस्कार को अपना बनाना, वो तो हमें किसी के अंदर भी दिखाई दे सकता है. इट कैन बी जस्ट अबाउट एनी वन. अगर हम अपना एंटीना हमेशा रखें उस डायरेक्शन में कि मुझे कैच करना है, मुझे सीखना है, वील गेट टू लर्न फ्रॉम एवरी वन वी मीट.
0: मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर, 30 मोर देन 30 ईयर्स. मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, यू नो, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहा था सुरेश भाई, आपको शोभा नहीं दे रहा है. यू नो, आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम. तो मतलब ये आप मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर। उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी, मैंने बोला इतना झुकना नहीं है। तो जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखा जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं।
1: दिस इज इट, मतलब जिसने कहा वो बात उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी।
0: लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं ऐसा करने वाले, ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर में ट्राई कर रहा था।
1: राइट
0: तो ऐसा टच किया, आई स्टिल डोंट नो हु ही वाज, यहाँ हाथ लगाया था।
1: अभी तो हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी,
0: उसकी फीलिंग में और उसका मेरे बारे में
1: भावना, इंटेंशन। तो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है। इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो जाता। अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है। आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूंगा, हो गया। ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा, ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने
0: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम?
1: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते
0: तुम? इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम?
1: बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल है। राइट, सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना। सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही। तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं। सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है। लेकिन तब उस चीज को देखकर कि कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या? वो भी टेढ़ा होके ऐसे, ऐसे कोई चलता है? तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो, कि इतना भी नहीं करना आता।
0: ये जो आपने बात की क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, ये आपको शोभा नहीं देता। तो सिस्टर मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया, कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, या कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहां शोभा मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के कभी। लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था।
1: अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया? मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता?
0: जो भी रॉयल्टी नहीं है, नहीं।
1: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
0: नहीं करूंगा,
1: नहीं करूंगा। अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा। बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्रता, ये मुझे चेक करना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग
0: मेरे जीवन में तो अहंकार ही बड़ा था।
1: आंतरिक शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती है।
0: नहीं, उस टाइम पे तो अहंकार बढ़ा।
1: ये हम और गहराई से देखेंगे फिर कि मेरे जीवन में क्या बढ़ा उस लाइन से
0: अहंकार,
1: और उस लाइन को आज भी लेना है फिर से, क्योंकि लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है कि ये आपको शोभा नहीं देता, मतलब ये रॉयल्टी नहीं है। लेकिन अब मैं उसके और डीपर मीनिंग में जाऊं और चेक करूं क्या क्या मुझे शोभा नहीं देता और क्या क्या चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो दूसरे की दी हुई राय भी एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती। दिस इज द पावर।
0: मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया,
1: दैट्स ओके, बट उसको
0: और मैं वैसा बन गया। लेकिन आई एक्सेप्ट कि मेरी, मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया।
1: सो इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है,
0: बढ़ता गया मेरा,
1: मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं इतना नहीं ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी।
0: सही बात।
1: और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे इतना भी नहीं कर सकते,
0: चार रोटी नहीं खा सकते यार, तुम दो ही खाते।
1: सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आवर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार।
0: सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना।
1: राइट।
0: ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर, व्हिच मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर and cannot blame situations, past or people. It also means other people will choose their path. We cannot force them to change. We can give our opinion to people. To accept it or not is their choice. They can accept because they found it right, or they fear us, or they seek our approval and want to please us, or they will do it for our happiness. Whatever may be the reason, choice and decision is theirs. We have not changed them. People and situations can influence us, but the final decision will be ours. We can influence people, but the final decision will be theirs. No one can change us, and we cannot change anyone. Neither a victim feeling that we are who we are because of others, nor a feeling of being a controller. When we give advice to others, our vibrations and words both radiate to them. If we believe and live that advice, if it is a part of our energy field, then our vibrations and words will be in harmony and will create a powerful impact on them. Our vibrations influence others more than our words.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 9995596606।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी

0: आनंदाचे सुर पुण्याचा माद आपण ऐकतायत रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तू
1: हाँ
0: नारनवेली है तू।
1: कुछ कहा?
0: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए।
1: सच?

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का, जा जा जा, जा।

की जवान।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?